दोस्तों, ताजी हवा में सांस लेना आत्मा के लिए औषधि के समान होता है। ताजी हवा में गहरी सांस लेने से न केवल फेफड़े भर जाते हैं बल्कि मन भी शांति से भर जाता है और खुशियां ही खुशियां चारों ओर छा जाती है। तो क्यों ना हम भी ताजी हवा में सांस लें।

दोस्तों, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जो केवल संगीत ही नहीं बल्कि जीवन जीने के गहरे और प्रेरणादायक सबक भी सिखाती है। यह हमें अहंकार त्यागने और हमेशा मधुर स्वभाव रखने की प्रेरणा देती है। बांसुरी के भीतर कोई गांठ नहीं होती। ये सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जब आप बांसुरी में फूंक मारते हैं ना, तो वो खुद को पूरी तरह से खाली कर देती है। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने दिमाग से पुराने विचारों का बोझ और अहंकार खाली नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान और सफलता रूपी संगीत जीवन में नहीं उतर सकता। बांसुरी में जितने भी छेद होते हैं वे चाकू या गर्म लोहे से छेद कर बनाए जाते हैं, यानी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब उससे

धुन निकलती है ना, तो वो हमेशा मीठी और सुरीली होती है। ये सिखाती है कि चाहे कितने भी दुख या परेशानियां क्यों ना आए, अपनी बोली और कर्म में हमेशा मिठास बनाए रखें।

0: मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई